0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

0: दुलिखेल अस्पताल दोलखा अस्पताल दोलखा।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

कपड़े पहन के जाती मैडम डिस्को, वीआईपी में कॉम्प्लीमेंट्री शॉर्ट्स भी दे दो इसको, इसको गाड़ी चाहिए लंबी, म्यूजिक चाहिए लाउड, ये जाती महंगे

प्रत्येक सातक शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपराह्न 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीति कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

नमस्कार रेडियो शैलम सामुदायिक एफएम 92.7 MHz बाट म पति प्रसाद सापकोट आज विक्रम सम्बत 2083 साल अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सन 2026 जून 3 तारीख ज्येष्ठ 20 गते बुधवार तृतीय तिथि अब स्तुति करूं।

0: धोका होला है जीवन को अंतिम क्षण में धोका होला है। भाषा का डोला में चढ़ेर सेतो पछौरा ओढ़ेर जंती जान्छन् खुरुरू आगो लाग्छ हुरुरू यो अमूल्य जीवन गइगो बितेर कृष्ण कृष्ण भनौला संसार पार तरौला भन्दा भन्दै यो अमूल्य जीवन गइगो बितेर यो अमूल्य जीवन गइगो बितेर। हस्त धन्यवाद।
1: परिचित परिचित मित्रजनहरूमा म शिवको नमस्कार। नेपाल र नेपाली

आए फेरी वरुण जी दृढ रूप धारी, पूजा करे निरपति जे गरी भौती बारी। बिंती करे वरुण को सब दात आओस, यो पुत्र यज्ञ पशु लायक हो जाओ। दात न मृदिनु छैन बलि भनेर, देखिन्छ शस्त्रहरूमै कुरा सुनेर। यति भनी वरुण घरतिर फर्किआए, राजा